हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दिया आसा पूरिया कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी हो। जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ये गल वखरी है। आस भी कई प्रकार की है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा

कर आसा। आयो प्रभ मांगण, मैं बड़ी आस करके हे मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगिया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगिया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्ष ही गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवें दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसी दी आस पूरी हुंदी है। हां ये गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड़ के ही चला गया। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउणी है,

हे मालिक मैं ये आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा, मैं ते इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा। हुण ये आस ते पूरी ताई हो सकती है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की।

भगत रविदास जी कहिंदे मैं ते इसे आस ते जीउण डिया तेरे दर्शन देखने ने भावे चिर बाद ही हो दर्शन तेरे जरूर करने ने भाई ये ते ताई हो सकता है मनु ऐसा निश्चय यकीन विश्वास हो जाए वो भी तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते कि हे मेरे मालिक मैं तेरे दर्शन करना है ते भगत जी कहते ने कहो रविदास परो तेरी सांभा भेग मिलो जन करना बिलांबा हे मेरे मालिक जड़ तक तेथों दूर सा मैं देरी भी बर्दाश्त कीती है ते दूरी भी बर्दाश्त कीती पर हुण तेरी शरण विच आ गया हुण ना ते देरी बर्दाश्त हुंदी है ते ना दूरी क्योंकि दूरी मिट गई है फिर देरी क्यों बेग मिलो मैनू जल्दी मिल जन करना बिलंबा बिलंबा कहिंदे ने थोड़ी जी भी देर ना ला ढिल ना ला टाइम ना ला मैनू जल्दी मिल इसलिए साध संगत आओ ये अमृत वेला भागा वालियां नूं नसीब हुंदा है बहुत कर्मा वालियां नूं ख्याल करिया करो गुरसिख दे वास्ते गुरु दियां हर वक्त बाहां फैलियां होईयां ने आवाज देंदे ने आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे ओए आ भाई आ मैं ते तेरी उड़ीक विच हां मैं तेरी इंतजार पिया करना ते तू अजे सुता ही नहीं उठया जे तू सुता नहीं उठया ते पाठ कदों करेगा जे पाठ नहीं कीता ते गुरु घर कदों आवेगा ते जे गुरु घर नहीं आया ते उस मालक नाल कदों जुड़ेगा कदों दे नाल तेरी प्रीत लगेगी आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सची बाणी आओ भाई ये बाणी गुरसिख वास्ते है ते गुरसिख ने सुननी है ते आपां ये दो चीजां जरूर प्राप्त करिए अमृत ते अमृत वेला क्योंकि जड़ तक सिख पंथ अंदर ये दो चीजां रहियां ने चढ़दी कला विच रहे है जदों ये दोवें खुश गईयां ये टहिंदी कला विच तुरना शुरू हो गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸਤ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਜਬੂਰਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਲਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੇ ਮਨ ਸਕੂਨ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ऐसी गल नहीं है इत्थे रह के भी असी बड़ा कुछ गुरु को प्राप्त कर सकते हाँ आओ ये दो चीजा जरूर हासिल करो अमृत ते अमृत वेला क्योंकि जिदे कोल अमृत ही अमृत वेला है उदे कोल सब कुछ है ते जिदे कोल दोवें चीजा खुस गई उदे कोल कुछ भी नहीं है वो खाली है सतगुरु बख्शिश करे सतगुरु रहमत करे अज अमृत वेले तो तुसा सतगुरु के दर ते हाजरियां पर के संपूर्ण श्री आसा जी दीवार का कीर्तन सुन आसा दी वार दा कीर्तन ओ है धन गुरु नानक पातशाह दा हुक्म है जिहड़ा मन करके करे ते मन करके सुने ओदियां आसां पूरियां हो जांदियां ते असीं जिन्ने भी बैठे हां आस ला के बैठे हां सब को आसे तेरी बैठा सारी सृष्टि तेरी आस ते जीवत है कोई है ऐसा जिन्हों मालिक तेरी आस ना होवे हर कोई तेरी आस ला के बैंदा है आपां अरदास करिए सतगुरु साडियां आसां पूरियां करन अपने दर ते हाजरी लाउंदे होए आओ प्यार शब्दा सहित सारे मिलके रसना नूं पवित्र करो एक दो मिनट आपां सिमरन विच भी लाइए।

मैं मन की हालत किथे जाके कूकां ते पुकारा तेरे दर तो बिना कोई आसरा नहीं मेरे मालिक रहमत करो ते जोड़ लवो टुटे होए नू बिछड़े होए नू अपने चरणां नाल जोड़ के सतसंगत दा आसरा बख्शिश करो इथे मेरा मन टिक जाण।

नांदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठियां ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने। की गल, गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बिछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके दिंदे हां, तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रही ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां प्रक्रमा कीतियां, पांच पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंगो, अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया।

आप भावे दुखी हो लवे पर दूसरे नु सुख दिंदा। ते कबीर साहब कहंदे ने आप गए औरन हूं खोवे आग लगाए मंदिर में सो। कई एहो जे भी आदमी जेड़े आप दी खराब हुंदे ने नाल दूसरों ने भी खराब करदे। आग लगाए मंदिर में सोवे, मंदिर नू घर नू अग लगा के ते आप ही विच जाके बह जांदे। एहो जे इंसान आप ते दुखी होंदे ने नाल दूसरों नू भी।

आप अंदर जाके सो जाओगे। ये भी नहीं पता कि अपने घर नूं मैं आप ही अग ला बैठा ते अंदर आके सो गए। जे घर सड़ेगा तो मैं भी नाल ही सड़ांगा। एहो जी इंसान केड़े

केरल दा राजा एदे कार राजकुमार ने जन्म लिया। ए राजकुमार तिना दिना दा पड़ोसी राजे ने हमला कर दिता। केरल दा राजा अपने देश की रक्षा करता होया शहीद हो गया। जो समय का रवाज सी राजे दे नाल राणी भी तिना दिना दे बच्चे इस राजकुमार नू छड़ के राजे दे नाल सती हो गई। दुश्मन का कब्जा केरल ते हो गया। जेड़ी दाई इस बच्चे की देखभाल करती सी बड़ी सियाणी निकली। उस दाई ने यह विचार कीती जे ए राजकुमार दुश्मन राजे दे हाथ लग गया तो उन्हें इनू मार देने, क्यों ना मैं इनू इथों ले चला। उस दाई ने इस राजकुमार ने जिदा नाम भगत चंद्रहांस है कपड़िया विच लपेटे आ चोर दरवाजे तो निकल के दूसरे राज चंदनपुर चली गई। चंदनपुर एक घर ले लिया, इथे रहन लग पई। मंग तंग के लियाना अपना पेट भरना इस यतीम राजकुमार चंद्रहांस की पालना करनी। चंदनपुर का जिहड़ा राजा सी बड़ा धर्मात्मा सी। इसे राजे का वजीर जिदा गुरबाणी विच नाम त्रिष्ट बुद्धि आया। ए वजीरे समझदा सी कि राजे दे घर लड़का कोई नहीं, एक लड़की है। ए राजभाग मेरे पुत्र संभालणगे। त्रिष्टबुद्धि दे दो लड़के सन मदन मदन ते अमल। इन्हां दोनों दा सुभा वखरा सी। मदन साधु सुभा दा ते अमल जेड़ा सी जेहो जा नाम काम भी ए दे ओहो जे ए अमला विच ही लगा रहिंदा सी।

क्योंकि मन माड़ा कर्म भी ये दे माड़े सोचता भी माड़ा है इस वास्ती ता एहो जी लोका वास्ती।

पांच साल दा हो गया गलियां विच तुरिया फिरदे कुदरती एक संत मंडली शहर दे बाहर आई जेड़ा मदन सी साधु सुभा दा बंदा दूसरा भरा अमल ए अमलां विच लगा रहिंदा सी जिथे महलां विच राग रंग हुंदे सन उथे मदन दे सदका कदी कदी कीर्तन भी होया करदा सी संत मंडली महलां विच आंदी कीर्तन करदी ते वापस अपने टिकाने चली जांदी एक दिन चंद्रहांस तुरदा तुरदा संतां दे डेरे चला गया जेड़े मुखी संत सन उन्हां चंद्रहांस नूं देखिया मन बड़ा खुश होया अपने कोल बठा लिया एक राजकुमार सी मोचित लगदा सी संतां कोल बैठा रहा हुण चंद्रहांस दा रोज दा कम बन गया रोज संतां कोल आ जाना इन्ना प्यार बनिया कि हुण संतां कोल ही रहण लग पिया उधर मदन ने महापुरशां नूं महलां विच बुलाया कीर्तन तो बाद लंगर शुरू होया पंगतां लगियां जेड़े मुखी संत सन चंद्रहांस उन्हां दे कोल बैठा सी सारे लंगर छकन लग पए त्रिष्टपुदी वजीर

श्रीपति वजीर कहन लगा केड़ा राणा केड़ी ऐसी गल उस परमेश्वर दी तुहानू याद आई है तुसी हस पए हो। संत कहन लगे उस परमेश्वर दे रंग भी न्यारे ऐ त्रिष्ट बुद्धि वजीर ऐ जड़ा यतीम राजकुमार चंद्रहांस साडे कोल बैठा है समय दे नाल ऐसे यतीम चंद्रहांस ने इस चंदनपुर दा राजा बनना है ते इस राज दा जवाई बनना है। ए सुन के वजीर दे पैरां थल्लू ते जिवें जमीन निकल गई उथे कुछ ना बोलिया दबे पैर वापस मुड़िया ते जलातां दे कोल चला गया।

पर डर नहीं मन विच महापुरुषां दे कोल रहण करके रब दे भरोसा हो गया सी। चंदनपुर दे कोल कुंतलपुर एक छोटी रियासत सी। एदा राजा

राजे कुलिंदर ने चंद्रहांस नू अपना मुत बनना अपने पुत्र बना लिया। सारे शहर विच खुशियां मनाईया गईया। एक पासे राजा कुलिंदर है जिदा मन साफ परमेश्वर दे पै विच रहिंदा है, परमेश्वर नाल प्यार करदा है। एक पासे त्रिशभुजी वजीर है जिहड़ा कपट ईरखा ते दुबधा दे नाल भरिया होया है। एहो जे वजीर, एहो जे इंसान जिन्हां बारे कभी

रस्ते दे विच चिट्ठी खोल के ना पढ़ी। किसे दी चिट्ठी पढ़नी महापाप हुंदा। चंद्रहास ने वह चिट्ठी पग विच टुंग ली, घोड़े ते चढ़ के ए चंद्रहास चंदनपुर नूं तुर पिया। ज्यों सवेर दा तुरिया शाम दे वेले चंदनपुर जा पहुंचे है।

चौथा कहन लगा तुहानू नहीं पता मुंडे बड़े शतान इना मुंडिया नी कंध टप के गन्ने तोड़ के ले जा करने ए सुन के पहले नु गुस्सा आया कहन लगा ठीक है कमा ते फिर लावांगे गन्ने फिर बीजांगे आओ पहला पिंड वाले नु देख लेंगे। ए चारो जने उठे पिंडा च मकान ते कच्चे ही हुंदे पराली इना कठी कीती सारिया दे घरां दे अगे पिछे पराली कठी कर दिती रात दा वेला सी ते पराली नू अग ला दी लोकी जिहड़े सन घर छड़ छड़ के बाहर नू भजन लग पए ते ए चारो जने चौंक विच खलोते कहण आओ तोड़ो गन्ने देखदे आं तुसी हुण किवें साडे गन्ने चूपदे हो किवें गन्ने भन्नदे तो एहो जिहड़े मूर्ख इंसान ने उन्हां दा भी कदी भरोसा नहीं कर

किसी बारे ना माड़ा सोचो ना किसी नू माड़ा कहो दसा नवा दी कीर्त करो हर इंसान दे नाल प्यार करो हरेक इंसान दे विच परमेश्वर वसदा है ते जदों आपां इह समझ लवांगे सारिआं विच परमेश्वर है जे किसी बारे माड़ा सोचांगे ता समझो फिर असीं रब बारे माड़ा सोचदे हां इस करके सब नाल प्यार करो जदों सारे नाल प्यार करोगे ता सारिआं विचों तुहानूं रब दी झलक नजर आवेगी।

न जाने तुमरायंत अंत न सिरती कहना अंत अंत न सिरती कहना अंत अंत न करने देना अंत अंत न वेखना सुनना अंत अंत न जापे क्या मन मंत्र

पर कोई न जाने तुम्हारा अंत पण को आहारी तेरो नाम त्यायत है पूर्व पलाऊ काम रूपों कमाऊ सर्व ठौर में बराजे जहां जहां जायत है सर्व ठौर में बराजे।

गावत दुनो मोहनिया मन मोहने गावन तुनो मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले सुरगा मच प्याले